नमस्कार एडलेड, आप सुन रहे हैं 5VBR 103.1 FM और मैं हूं आपकी प्यारी रेडियो जॉकी निकिता, लेकर आई हूं यादों की बारात का एक रोमांटिक आतिफ असलम स्पेशल प्रोग्राम। जी हाँ, आज के इस 30 मिनट के प्रोग्राम में हम मोहब्बत के 5 खूबसूरत रंग महसूस करेंगे। प्यार की शुरुआत, पहली नजर का जादू, दिल का यकीन, इश्क की गहराई और किसी का हो जाने का एहसास महसूस करेंगे।

क्या खूबसूरत शुरुआत जीने लगा हूँ। जब प्यार जिंदगी को एक नई रोशनी और हर दिन को एक नया मतलब दे देता है। आतिफ असलम का जन्म 12 मार्च 1983 को पाकिस्तान में हुआ। क्रिकेट का सपना देखने वाले आतिफ ने सुरों की दुनिया में ऐसी पहचान बनाई कि उनकी आवाज सरहदों से पार करोड़ों दिल तक पहुंच गई। अब सुनिए पहली नजर में कैसा जादू कर दिया। फिल्म रेस का ये गीत है और मैजिकल आवाज है आतिफ असलम की। सुनेंगे ओनली ऑन 5 BBI पर आपकी प्यारी रेडियो जॉकी निकिता के साथ।

पहली नजर में कभी एक नजर ही दिल की पूरी कहानी लिख देती है। अर्ज किया है, वो सामने आए तो वक्त ठहर सा गया, वो सामने आए तो वक्त ठहर सा गया, एक अनजाना चेहरा दिल में उतर सा गया। ना लफ्जों की जरूरत ना मुलाकात पुरानी थी, बस पहली नजर थी और मोहब्बत की कहानी थी। चलिए अब सुनते हैं ये अगला नगमा, बाखुदा तुम ही हो। किस्मत कनेक्शन मूवी से इस गीत को लिया है और आतिफ असलम का साथ दिया है अलका याग्निक ने। सुनते हैं ये अगला नगमा ओनली ऑन 5 EBI पर आपकी प्यारी रेडियो जॉकी निकिता के साथ।

0: Asian fusion and authentic Indian. With a relaxing seating arrangement for dine-in and takeaway options at our two locations, Mother India Kitchen, Port Road, Alberton 08711-26878 and Cinnamon Curry, Findon Road, Woodville South 08708032201. You can contact for your private or official functions. We are proudly announced that Mother India Kitchen and Cinnamon Curry are the sponsors of this program.
1: Seeking a genuine assortment of spices and authentic Desi products? If so, a visit to Royal India Groceries is indispensable. Transporting you to the heart of India, it offers an exploration into Desi culture. Situated on Marion Road in South Plympton, Royal India Groceries welcomes visitors 7 days a week. For any queries or further information, please reach out on 08-8371-0051.
2: For setting up of tax-effective business structures, tax advice, business activity statements, and income tax returns, please contact LSM & Co. Chartered Accountants. Individual tax return fees start from only $77. Conditions apply. You can find them at 212 Prospect Road, Prospect, or call them on 8342 3923. LSM & Co, a sponsor of this program.
3: Thinking about a home loan, car loan, or refinancing in Adelaide? Mortgage Choice's Jags Lakhani is your local mortgage advisor in South Australia, ready to give you expert support that reflects your needs. Need a first home loan, investment, SMSF, personal or construction loan, or even car and business lending? Jags works with over 35 plus lenders, so you get more choice, more flexibility, more care, and more local support. Whether you're buying, refinancing, or need help finding the right loan, Jags is your trusted partner, guiding you with clarity, honesty, and personal attention every step of the way. Call or email Jags Lakhani today for a free consultation. That's 0451956659, or visit mortgagechoice.com.au/jags.lakhani. Unlock the right way forward.
4: A proud sponsor of 103.15 EBI FM.
5: चलिए दोस्तों, आप सुन रहे हैं 5 EBI 103.1 पर आकाशवाणी एडिलेड, और यादों की बारात में हम आतिफ असलम स्पेशल प्रोग्राम लेकर आए हैं। इस समय ढेर सारे लिसनर्स इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। उसमें से राबिया ने हमें मैसेज के जरिए बताया कि वो अपने परिवार के साथ आतिफ असलम स्पेशल प्रोग्राम एंजॉय कर रही हैं, और जो अगला गीत है पिया ओरे पिया, फिल्म तेरे नाल लव हो गया, बस ये गीत उन्हीं के हवाले हम करेंगे। पर अगर आतिफ असलम की बात करें तो 2004 में इन्होंने अपना एक सोलो एल्बम लॉन्च किया था जल परी नाम से, और इस संगीत में जो योगदान इन्होंने दिया इसके लिए पाकिस्तान सरकार ने 2008 में उन्हें मेडल ऑफ एक्सलेंस से सम्मानित किया। अब इश्क की गहराई को महसूस करते हैं ये अगले नगमे के साथ। ओनली ऑन 5 ABI पर सुनेंगे ये अगला नगमा आपकी प्यारी रेडियो जॉकी निकिता के साथ।

एक ऐसा गीत जहाँ प्यार में तड़प भी है, सुकून भी है और अपने पिया के लिए पूरा समर्पण भी है। अर्ज किया है, तुम मिले तो खामोशी भी गीत बन गए, दिल की हर धड़कन तुम्हारे करीब हो गई। इश्क को लफ्जों में कैसे बयां करें, तुम्हारा नाम लिया और हर दुआ मुकम्मल हो गई। दोस्तों, यादों की बारात का ये आखिरी गीत तेरा होने लगा हो। फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से इस गीत को लिया है और आतिफ असलम का साथ दिया है अलीशा ने। जाते जाते दो पंक्तियां, गीत खत्म हो जाते हैं पर एहसास रह जाते हैं। कुछ लोग दूर होकर भी दिल के पास रह जाते हैं। मैं हूं आपकी अपनी आरजे निकिता और आप सुन रहे हैं यादों की बारात आकाशवाणी आरले पर। जाते जाते ये नगमा सुनेंगे और आपकी और मेरी मुलाकात जल्द होगी। तब तक के लिए सुनते रहिए 5 ABI।